नमस्ते। ब्रह्मा मुरारी स्थिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सूर्या सौरमतेन्द्रश्च पदवीं षण्मङ्गलं मङ्गला सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रा सुखं शंसनि राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्यो नित्यम् नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु। मम ते सर्वे नुकूला ग्रहा।

0: लो बजेट में बनने भिडियो होने ये मोडल सोडल हाल अलग राम होने ये
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।

0: रेडियो बिहानी 97.6 MHz
1: अमेरिकन डिग्री अब नेपाल बसी बसी MIT बागबजार।

बिल ल्यायो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी एलजी लाइफ्स गुड